गर्चे पुरखता है पर कहां जाए तेरा बंदा। ओ अल्लाह, वी एक्नॉलेज दैट इंडीड वी आर द मोस्ट सिनफुल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, फुल ऑफ फॉल्ट्स, फुल ऑफ सिंस, फुल ऑफ वाइसेस एंड फुल ऑफ ईविल, पर कहां जाए तेरा बंदा, वे एल्स कैन वी गो माय अल्लाह, विच अदर डोर इज देयर दैट वी कैन टैप, देयर इज नो वन फॉर अस बिसाइड्स यू, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं, तेरे सिवा कोई हमारा नहीं, देयरफॉर माय बिलव्ड अल्लाह वी हैव कम टू योर डोर विद ग्रेट होप फॉर यू आर अरहमुर राहिमीन। गर्चे पुरखता है पर कहां जाए तेरा बंदा, तेरे दर पर तेरा बंदा बउम्मीदे करम आया।

निकम्मा बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महव ख्वाब गफलत बस अब जगा दे, बस अब जगा दे।

याद अपनी रचा दे ऐ मेरे अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह। जामे मोहब्बत अपना पिला दे, गिव मी द कप ऑफ योर मोहब्बत, फ्रॉम योर ओशन ऑफ मोहब्बत एंड मारिफत गिव मी द ड्रिंक। दैट इज वन थिंग दैट विल मेक द पर्सन देन मूव। मोहब्बत मेक्स अ पर्सन मूव्स माउंटेन्स, ही डजंट सी व्हाट इज इन हिज पाथ आफ्टर दैट। Even if he has to go and rest forever on Mount Everest, but he will climb it. The muhabbat of that. The person has to jog hundreds of kilometers, he will do it. Marathon he will run. Winter, summer, it's not rain, hail, anything. It's passion. Once the person gets a passion for something. So this muhabbat is a thing like that. So we ask Allah Ta'ala, Ja mein muhabbat apna pila de. दिल में मेरे याद अपनी रचा ले।

पेश नजर हो जाऊं कहीं में देखूं जिधर में दीदे दिल में तुझको बसा लूं सबसे हटा लूं अपनी नजर में तेरा ही जलवा पेश नजर हो जाऊं कहीं मैं देखूं जिधर में।

भूल सकूं ता उम्र न तुझको चाहूं भुलाना खुद भी अगर मैं. या अल्लाह, द वे आई एनग्रेव योर नेम ऑन माई हार्ट, द वे आई एनग्रेव योर मोहब्बत ऑन माई हार्ट एंड द मोहब्बत ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वेयर एवर आई गो माई अल्लाह, आई सेंस दैट यू आर विद मी. Irrespective of the outside condition, whether it is of weakness, of poverty, of test and trial, of pain and injury, whatever it may be. But I sense that my Allah is with me. And even if I want to forget you, my Allah, let your name be so deep in my heart and your muhabbat be so deep in my heart that even if I want to forget you, I cannot forget you. My Allah, even if I want to forget you, but I must not be able to forget you. Chahun bulana khud bhi agar mein. Shughl mera vas ab to ilahi, shaam o sahar ho.